रेडियो एनआरएन 99.1 खरो विषयमा सारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ ग्लोबल आईडी बैंक सबैका लागि बैंक डिस होम इन्टरनेट।

0: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईं हाम्रो अटुट साइनो।
1: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन, नेभर मिस एन अपडेट फ्रम टिप्स अफिसियल।

0: Why I led Sunday noon chat Radio Silence 89.8 MHz.
1: सहिनो समय सूचक अहिले साँझको 6 बज्यो PM
2: रेडियो साइनो 89.8 MHz तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।